0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0300-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9

ने एक बात कही। दिलजीत ने कहा, आज वैंकूवर में जो स्टेडियम शो था हाउसफुल था, वो मेरे लिए एक भावुक पल था। वो स्टेडियम गुरु नानक जहाज कुमागाटा मारू घटना से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। जहां हमें पहले आने से रोका गया था, आज उसी जगह के पास 50,000 लोग एक साथ शो देखने आए हैं। दिलजीत यहां जिक्र कर रहे थे 1914 के कुमागाटा मारू हादसे का। उस समय 376 भारतीय यात्रियों को नस्ल भेदी कानूनों की वजह से कनाडा में घुसने नहीं दिया गया था। ये 376 लोग जहाज पर ही करीब 2 महीने तक फंसे रहे, जहां उनके खाने पीने और इलाज के लिए उन्हें तरसना पड़ा था। कनाडा की फोर्स उन्हें भगाने के लिए उतर गई थी और आखिरी में उन्हें वापस भारत भेज दिया गया था। क्या था कुमागाटा मारू हादसा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बात है साल 1914 की। ब्रिटिश भारत के 300 से ज्यादा सिख यात्री कनाडा जाने के लिए एक जापानी जहाज कुमागाटा मारू पर सवार हुए। ये लोग किसान, मजदूर और पूर्व सैनिक थे। कनाडा में घुलने मिलने के लिए वेस्टर्न कपड़े पहनकर गए थे और इस जहाज को गुरदीत सिंह नाम के शख्स ने किराए पर लिया था, जो एक अमीर व्यापारी थे। जहाज 4 अप्रैल को हांगकांग से चला और 23 मई को वैंकूवर पहुंचा, लेकिन एक नई जिंदगी की आस लिए पहुंचे इन यात्रियों के लिए मुश्किलें शुरू हो गई। कनाडा की सरकार ने जहाज को बुराड इनलेट पर रोक दिया, जो कि वैंकूवर शहर के पास एक बड़ा समुद्री इलाका है, जहां बड़े बड़े जहाज खड़े होते हैं या आते जाते हैं। यहां जहाज को रोका गया, यात्रियों का खाना पानी और इलाज सब बंद कर दिया गया। लोगों की हालत बिगड़ने लगी थी। महीने तक लोग बिना खाना पानी के जहाज पर फंसे हुए थे। जुलाई तक ये मामला और तनावपूर्ण हो गया। 19 जुलाई को 100 से ज्यादा कनाडा पुलिस और इमिग्रेशन अफसर जहाज पर भेजे गए, ताकि जबरदस्ती उस पर कब्जा किया जा सके, लेकिन जहाज में बैठे लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने लोहे की पाइप से और कोयले से उन अफसरों का सामना किया, विरोध किया। जब जहाज पर खाने पीने का सामान खत्म होने लगा, हालात बहुत खराब हो गए, तो यात्रियों ने विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने अपनी बात पहुंचाने के लिए यूके के राजा जॉर्ज 5 और कनाडा के गवर्नर जनरल को भी चिट्ठियां लिखी, लेकिन उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। ऐसे मुश्किल समय में वैंकूवर में रहने वाले कुछ भारतीय लोगों ने उनकी मदद के लिए एक शोर कमेटी बनाई। इस कमेटी ने उनके लिए एक वकील रखा और खाने पीने का सामान भी पहुंचाया। कमेटी की अगुवाई हुसैन रहीम कर रहे थे। कमेटी ने करीब $20,000 इकट्ठा किए, ताकि जहाज का कंट्रोल उनके पास बना रहे और वो कानूनी तरीके से सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रख सकें। करीब 2 महीने तक कानूनी लड़ाई चली और आखिर में 376 में से सिर्फ 20 लोगों को ही उतरने की इजाजत मिली, वो भी इसलिए क्योंकि उनके पास पहले से कनाडा में रहने का अधिकार था। बाकी सभी यात्रियों को जहाज पर ही रोक दिया गया। तमाम जद्दोजहद के बावजूद बाकी लोग कनाडा की जमीन पर नहीं उतर सके और उन्हें वापस उसी जहाज से भारत भेज दिया गया। सवाल यह था कि आखिर इन यात्रियों को कनाडा में घुसने क्यों नहीं दिया गया। दरअसल उस समय भारत और कनाडा दोनों ही ब्रिटिश शासन के कब्जे में थे, इसलिए इन यात्रियों को लगता था कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं और उन्हें किसी भी ब्रिटिश क्षेत्र में बसने का हक है। लेकिन कनाडा सरकार ने 1908 में एक सख्त नियम बना दिया था, जिसे कॉन्टिन्यूस जर्नी रेगुलेशन कहा जाता था। इस नियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति तभी कनाडा आ सकता था जब वो अपने देश से बिना रुके सीधे यात्रा करके आए। चूंकि भारत से कनाडा की सीधी यात्रा संभव नहीं थी, कुमागाटा मारू जापान से चला था, ना कि भारत से, जबकि सिख यात्री भारतीय थे। इसी वजह से यात्रियों को रोक दिया गया। ये कानून खासकर भारतीयों को रोकने के लिए बनाया गया था, ताकि उन्हें कनाडा में बसने से एक तरीके से रोका जा सके। कनाडा में कुमागाटा मारू हादसा अचानक नहीं हुआ था। 1907 में ही वैंकूवर में एशियाई लोगों के खिलाफ दंगे हो चुके थे। दंगों को एशियाटिक एक्सक्लूजन लीग ने बढ़ावा दिया था। ये एक ऐसा संगठन था जो 1900 के आसपास कनाडा और अमेरिका में बना था। ये सारी बातें फ्रंटलाइन मैगजीन की रिपोर्ट में बताई गई हैं। उनका मकसद ये था, एशिया जैसे भारत, चीन, जापान से आने वाले लोगों को वहां बसने से रोकना। ये लोग चाहते थे कि उनका देश सिर्फ गोरों के लिए ही रहे और बाहर के लोगों को आने ही नहीं दिया जाए। उस समय ब्रिटिश कोलंबिया में पहले से ही डर और गलतफहमियां फैलाई जा रही थी कि भारतीय लोग आकर स्थानीय लोगों की नौकरियां छीन लेंगे। मीडिया और नेताओं की बातों ने इस डर को और ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके कारण भारतीयों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए। इसी के चलते जहाज के आने से एक दिन पहले ही कनाडा के एक नेता सर रिचर्ड मैकब्राइड ने कहा कि अगर एशियाई लोगों को बड़ी संख्या में आने दिया गया तो सफेद लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस देश को सिर्फ गोरे लोगों का देश बनाए रखना जरूरी है। इन सारी बयानबाजी के बीच आखिरकार भारत कनाडा की जमीन पर नहीं उतर पाए। 23 जुलाई को कनाडा की सरकार ने शिप को जबरदस्ती अपने पानी से बाहर भेज दिया। जहाज एशिया की ओर रवाना हो गया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने ऐसा माहौल बना दिया कि इस जहाज को किसी भी पोर्ट पर रुकने की परमिशन नहीं मिली। करीब 5 महीने तक ये लोग समुद्र में ही भटकते रहे, बिना खाना पानी के, रास्ते में पड़ रहे। हर पोर्ट पर लोग मदद मांगते रहे और हर बार निराशा ही मिलती रही। आखिरकार जब जहाज 26 सितंबर को कोलकाता के पास पहुंचा, तब भी उन्हें

0: पिछले दिनों ट्रंप के डिनर के दौरान हुई फायरिंग का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। संदिग्ध ने चंद सेकंड्स में तोड़ा था सुरक्षा घेरा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच सीमा पर बरकरार है तनाव। दोनों के बीच बातचीत कराने की कोशिश में जुटा है चीन। स्पेशल रिपोर्ट में समझेंगे क्या दोनों पड़ोसी देशों में सुलह करवा पाएगा चीन। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ईरान से। ईरान ने कहा है कि उसने पाकिस्तानी मीडिएटर्स को अमेरिका से बातचीत करने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है। हालांकि इस प्रस्ताव में क्या क्या है इसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ वो डेडलाइन भी करीब आ गई है जिसके तहत ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी संसद से मंजूरी लेनी होगी। अमेरिकी संविधान के मुताबिक जंग शुरू होने के 60 दिनों के अंदर जंग जारी रखने के लिए संसद से मंजूरी लेना जरूरी है। मगर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने दलील दी है कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए वॉर पावर्स रेजोल्यूशन को मानना जरूरी नहीं है क्योंकि ईरान के साथ हुए सीज फायर समझौते के बाद इसे मानना जरूरी नहीं रहा है। लेकिन दूसरे अमेरिकी सांसदों ने इस पर आपत्ति जताई है।
1: ईरान के मामले में अंत में मैं व्हाइट हाउस और व्हाइट हाउस के वकील के फैसले को ही मानूंगा। हालांकि हम अभी सीज फायर की स्थिति में हैं और हमारी समझ के मुताबिक सीज फायर के दौरान 60 दिनों की समय सीमा या तो कुछ समय के लिए रुक जाती है या पूरी तरह से थम जाती है।
2: मुझे नहीं लगता कि कानून इस बात का समर्थन करेगा। मेरा मानना है कि शायद कल 60 दिनों की समय सीमा पूरी हो जाएगी और इससे वहां के प्रशासन के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सवाल खड़ा हो जाएगा। हमें संविधान से जुड़ी गंभीर चिंताएं हैं और हम उन चिंताओं के साथ साथ कानून से जुड़ी अतिरिक्त चिंताओं को भी नहीं जोड़ना चाहते।
0: इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि उनके देश को फिर से जल्द ईरान के खिलाफ एक्शन लेना होगा ताकि जंग के सारे मकसद हासिल किए जा सकें। लेकिन ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर ने कहा है कि अगर दुश्मन ने छोटे पैमाने पर भी कोई ऑपरेशन चलाया तो उसका बड़े और भारी हमलों से जवाब दिया जाएगा जो दर्दनाक होगा। इस पर और जानकारी दे रही है बीबीसी संवाददाता योलान नेल।
3: So these were comments that Israel Katz made at the same time as there are a number of Israeli.
4: तो इसराइल काट्स ने उसी वक्त ये कमेंट किए थे। कई इसराइली रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान के खिलाफ फिर से टकराव शुरू होने की आशंका के चलते देश हाई अलर्ट पर है और ये सब उस वक्त हो रहा है जब राष्ट्रपति ट्रंप को व्हाइट हाउस में यूएस सेंटकॉम के नेताओं से ईरान से निपटने के अलग अलग मिलिट्री ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। इसराइली पत्रकार इन विकल्पों का विश्लेषण कर रहे हैं और उनका कहना है कि छोटे लेकिन बेहद ताकतवर हमलों का एक और दौर शुरू हो सकता है। इन हमलों का निशाना एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी इमारतें हो सकती हैं। मकसद होगा ईरान को फिर से बातचीत की मेज पर लाना और उसे समझौते के लिए तैयार करना। ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि एक विकल्प ये हो सकता है कि स्पेशल ऑपरेशन के जरिए ईरान में जाकर एनरिच्ड यूरेनियम पर कब्जा किया जाए। हालांकि इसमें कई तरह की पेचीदगियां होंगी। इसके अलावा ग्राउंड फोर्स का इस्तेमाल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के कुछ हिस्से पर कब्जा करने और उसे कमर्शियल शिपिंग के लिए खोलने के विकल्प पर भी बात हो रही है, तो इन सब पर विचार किया जा रहा है।
3: There's been no comment on that from U.S. Central Command.
0: और जैसे जैसे संघर्ष की राजनीति आगे बढ़ रही है इसका असर तेल की कीमतों और खाने पीने की चीजों की सप्लाई में भी महसूस किया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों में से एक के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लगातार बंद रहने से दुनिया को हर हफ्ते 10 अरब मील्स की कमी का सामना करना पड़ सकता है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में यारा कंपनी चलाने वाले स्वेन होलसेथर ने कहा कि प्रोडक्शन और सप्लाई में रुकावट का सबसे पहला असर सबसे गरीब देशों के किसानों पर पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि अमेरिका और इसराइल के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद ईरान ने 20 से ज्यादा लोगों को फांसी दी है और 4,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। ताजा मामला 21 साल के ससान आजादवार का जिन्हें बीते रोज फांसी दी गई। ईरान की न्यायपालिका का कहना है कि आजादवार ने सुरक्षा बलों को ले जा रही एक मिनी बस पर पत्थरों और डंडों से हमला किया था। मगर ईरान ह्यूमन राइट सोसाइटी का कहना है कि आजादवार के परिवार ने दावा किया है कि उनसे टॉर्चर और प्रेशर के बाद लिए गए कबूलनामा और फिर मौत की सजा दी गई। यूएन का कहना है कि ईरान में दी जा रही मौत की सजा क्रूरता है, इसे रोका जाना चाहिए। मगर ईरानी अधिकारियों का कहना है कि पूरी कानूनी प्रक्रिया और निष्पक्ष मुकदमे के बाद फांसी दी जा रही है। देखिए बीबीसी संवाददाता कुकवांग की रिपोर्ट।
5: पूरे ईरान में मौत की सजाओं के बारे में अक्सर ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती, कई बार मौत की सजा देने के बाद सूचना दी जाती है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हाल के हफ्तों में जिन लोगों को मौत की सजा

0: दी गई उनमें से कुछ को इसराइल के लिए जासूसी करने या हथियारबंद गुटों का हिस्सा होने जैसे आरोपों में दोषी ठहराया गया था। लेकिन मानवाधिकार समूहों का कहना है कि जिन लोगों को मौत की सजा दी गई उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिला।
1: We do not have an independent judiciary.
2: ईरान में स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है और जिन लोगों को राजनीतिक कारणों से मौत की सजा दी जाती है जैसे प्रदर्शनकारी या विपक्ष के सदस्य उन्हें बंद कमरों में रिवोल्यूशनरी कोर्ट्स सजा सुनाते हैं। उन्हें वकील नहीं मिलते और टॉर्चर देकर लिए गए कबूलनामे के आधार पर सजा दी जाती है।
0: ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं जनवरी में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद मौत की सजाएं बढ़ी हैं और इसका संकेत न्यायपालिका ने इस साल की शुरुआत में ही दे दिया था।
3: अगर हमें कुछ करना है तो हमें जल्दी करना होगा। अगर हम वही काम कुछ महीनों बाद भी करें तो उसका असर वैसा नहीं होगा।
0: चीन के बाद ईरान ही ऐसा देश है जो बाकी देशों की तुलना में सबसे ज्यादा मौत की सजा देता है। आबादी के हिसाब से भी वो सबसे आगे है। ईरान ह्यूमन राइट्स संगठन के मुताबिक पिछले साल कम से कम 1639 लोगों को मौत की सजा दी गई, यानी औसतन हर रोज 4 से ज्यादा। एक्टिविस्ट्स कहते हैं अब मौत की सजा देने का तरीका बदल रहा है।
2: जो बदला है वो ये है कि अब ज्यादा संख्या में राजनीतिक कैदियों को फांसी दी जा रही है। सिर्फ 18 मार्च के बाद से कम 20 राजनीतिक कैदियों को मौत की सजा दी गई है जिनमें विपक्षी गुटों के सदस्य और प्रदर्शनकारी शामिल हैं। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया।
0: संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि मई सातो का कहना है कि ये सजाएं लंबे वक्त से असहमति जताने वालों को मौत की सजा देने के पैटर्न का हिस्सा है। जनवरी के विरोध प्रदर्शनों के बाद अमेरिका ने भी ईरान को चेतावनी दी थी कि हिरासत में लिए गए लोगों को फांसी ना दें। डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े कदम उठाने की धमकी दी थी।
4: मैं ईरान के बारे में इतना कहूंगी कि राष्ट्रपति और उनकी टीम ने ईरानी हुकूमत को साफ बता दिया है कि अगर ये हत्याएं जारी रही तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के बावजूद ईरान मौत की सजा देना जारी रखे हुए है और कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इसका मकसद लोगों को संदेश देना है।
2: हुकूमत हर दिन लोगों को याद दिला रही है कि अगर वो बाहर आए तो उनके साथ क्या होगा, लेकिन हम एक ऐसे शासन से जूझ रहे हैं जो लोगों की रोजमर्रा की समस्या हल नहीं कर पा रहा। वो सिर्फ दमनकारी ही नहीं बल्कि बेहद नाकाबिल और भ्रष्ट भी है।
5: अब तक ये तरीका काम करता रहा है। हो सकता है कि चीन या उत्तर कोरिया की तरह ये लंबे समय तक चलता रहे, मगर ये बहुत टिकाऊ समाधान नहीं भी हो सकता। अभी और विरोध प्रदर्शन नहीं हुए हैं, मगर हो सकता है कि युद्ध की वजह से ऐसा हो। हो सकता है कि युद्ध खत्म होने के बाद आर्थिक हालात का असर महसूस होने पर हालात बदल जाएं।
0: देश के अंदर तनाव बढ़ने और संघर्ष जारी रहने के बीच मौत की सजाओं में कमी आने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।
6: इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने युद्ध को लेकर सीज फायर का जो लेटेस्ट प्रस्ताव दिया है वो उन्हें पसंद नहीं आया है। और बीते शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डिनर के दौरान हुई फायरिंग का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वॉशिंगटन डीसी के अटॉर्नी जिनिन पेरो ने एक हाई रेजोल्यूशन वीडियो शेयर किया जिसमें संदिग्ध सिक्योरिटी तोड़कर आगे भागता हुआ नजर आया। हालांकि इसमें यह साफ नहीं था कि उसने गोली चलाई थी या नहीं। बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स इस बात की जांच कर रहे हैं कि सीक्रेट सर्विस ऑफिसर को जो गोली लगी क्या वो संदिग्ध की बंदूक से चली या फिर सुरक्षा अधिकारियों की बंदूक से। 31 साल के कोल थॉमस एलन नाम के शख्स पर राष्ट्रपति ट्रंप को जान से मारने की धाराओं के तहत जांच चल रही है। इस वीडियो को लेकर अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि वीडियो में एलन डिनर से एक दिन पहले होटल में चेक इन करने के बाद मुआयना करते दिख रहे हैं। इसमें वो एक रात पहले कॉरिडोर से होते हुए होटल के जिम तक जाते दिखे। अभियुक्त को लेकर कहा जा रहा है कि उनके पास एक सेमी ऑटोमेटेड हैंडगन, एक शॉटगन और 3 चाकू थे। इस नए वीडियो में क्या है और क्या इससे इस पूरे मामले में कोई बदलाव आएगा, इस बारे में बीबीसी संवाददाता पीटर बोस और जानकारी दे रहे हैं।
7: ये फुटेज पहले से कहीं ज्यादा साफ है और हमले के कुछ घंटों बाद जो हमने देखा था उससे भी ज्यादा जानकारी इससे मिलती है। हम संदिग्ध को कुछ सेकंड्स के लिए सिक्योरिटी पोस्ट के

0: मेटल डिटेक्टर से गुजरते हुए देखते हैं। उसने बॉल रूम में जाने की कोशिश की जहां डोनाल्ड ट्रंप और उनके मेहमान डिनर कर रहे थे। उन कुछ सेकंड्स में आप उसे एक बड़ा सा ओवरकोट पहने हुए देख सकते हैं और वो कुछ सेकंड के लिए एक दरवाजे के पीछे जाने के बाद गायब होता दिखाई देता है और फिर वो ओवरकोट उतार कर बाहर आता है।
1: You can see the long gun that he is holding and it's at that point that he tries to rush through that metal detector and appears to...
0: इस दौरान आप उसके हाथ में एक बंदूक देख सकते हैं और इसी वक्त वो मेटल डिटेक्टर से तेजी से गुजरने की कोशिश करता है और ऐसा लगता है कि सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट और उसके बीच फायरिंग होती है।
1: Who is the US attorney for the District of Columbia? She is the chief federal prosecutor here and she points out in the text associated with the video, she says there is no...
0: इस वीडियो की सबसे अहम बात यह है कि इसे एक्सपर्ट जिनिन पीरो ने शेयर किया है जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की अटॉर्नी है। वो यहाँ की चीफ फेडरल प्रोसिक्यूटर हैं। वीडियो के साथ डाले गए टेक्स्ट में उन्होंने कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि गोली सिक्योरिटी एजेंट्स की ओर से गलती से चली थी।
1: The suspect, but now they are saying, Donald Trump actually said it earlier in the day, they are categorically saying that this was not friendly fire.
2: और अब रुख करते हैं भारत के पड़ोस का, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के रिश्ते पिछले कुछ वक्त से तनाव भरे चल रहे हैं। इस हफ्ते भी पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर संघर्ष फिर भड़क गया और अब इनमें सुलह कराने की पहल कर रहा है चीन। हालांकि चीन मध्यस्थता आमतौर पर नहीं कराता, लेकिन फिर क्यों वो इन दोनों देशों में बातचीत करवा रहा है? सवाल ये है कि क्या चीन की कूटनीति कारगर साबित होगी और क्या वो पाकिस्तान और अफगान तालिबान को शांति की राह पर ला पाएगा? देखिए बीबीसी की साउथ एशिया रीजनल जर्नलिज्म टीम की ये खास रिपोर्ट।
3: पिछले कुछ हफ्तों से चीन एक संघर्ष में उलझे पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता कर रहा है। पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ टकराव सीमा पर झड़पों, हवाई हमलों और चरमपंथी समूहों को समर्थन देने के आरोपों तक बढ़ गया है। इस संघर्ष में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और दोनों देशों के रिश्ते कई सालों के सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। चीन आमतौर पर अपने आसपास के इलाकों से बाहर के संघर्षों में मीडिएशन करने से दूर रहता है, लेकिन अब उसकी ये नीति धीरे धीरे बदल रही है। तो अब चीन एक कूटनीतिक ताकत के रूप में क्यों आगे आ रहा है?
4: One of the longest standing principles of China...
5: चीन की विदेश नीति का सबसे पुराना सिद्धांत है दखल न देना, मगर उन्हें मध्यस्थता करनी है और इस सिद्धांत को बनाए रखना है। और मेरा मानना है कि चीन इस संतुलन को ऐसे बनाता है कि मेजबान देशों की सहमति हो और वो खुद चीन को मध्यस्थता के लिए बुलाएं।
4: In the Afghan-Pakistan...
3: चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अपने मेन प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है, लेकिन पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर हिंसा ने व्यापार पर असर डाला है। बॉर्डर क्रॉसिंग बंद है और चीनी इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट्स के लिए खतरा बढ़ गया है। पिछले एक साल में ही कई चीनी नागरिक हमलों का निशाना बने हैं।
6: The issue in this case for China is... There is a destabilizing effect.
7: इस मामले में चीन के लिए समस्या ये है कि इन दोनों पक्षों के बीच संघर्ष से पूरे इलाके में अस्थिरता बढ़ रही है, खासतौर पर टीटीपी के कारण, जो चीन के लिए भी बड़ी चिंता है क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जगह चीन के लोग निशाना बनाए गए हैं।
3: चीन को चिंता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर एक्टिव चरमपंथी ग्रुप्स में से कुछ के शिनजियांग से वैचारिक रिश्ते हैं और वो आगे चलकर चीन के अंदर भी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। चीन पहला देश नहीं है जिसने इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिश की है। कतर, सऊदी अरब और तुर्की पहले भी पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच तनाव कम करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन स्थायी संघर्ष विराम हासिल नहीं कर पाए। चीन मानता है कि वो दोनों पर असर डाल सकता है।
7: चीन दोनों मामलों में सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, इस स्थिति में वो दोनों पक्षों के लिए कुछ हद तक भरोसेमंद है, लेकिन मैं कहूंगा तालिबान के साथ ये भरोसा उतना नहीं है जितना पाकिस्तान के साथ। और फिर चीन आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव जैसे साधनों का भी इस्तेमाल कर सकता है।
3: तो क्या चीन सफल हो सकता है?
5: उरुमची में 7 दिनों की बैठक के जरिए चीन संघर्ष विराम बनाए रखने में ही सफल हो पाया है, लेकिन वो दोनों देशों में लंबे वक्त से चले आ रहे मसलों को हल नहीं करवा पाया है। इस पूरे मामले में ऐतिहासिक तनाव, भावनात्मक पहलू और भारत का फैक्टर भी शामिल है। तो मुझे लगता है कि ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें जल्दी सुलझाना मुश्किल है।

0: उनकी कूटनीति इस तनाव को कम करने और बातचीत के रास्ते खोलने में मदद कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दशकों से चले आ रहे अविश्वास, चरमपंथ और अनसुलझे विवादों के बाद ये थोड़ा मुश्किल लगता है।
1: और पब्लिक प्लेस पर लगे आर्ट इंस्टॉलेशन या
2: एक अपडेट सी जी ती सुनी मेन प्रोग्राम का समा जलमोस्ट समाप्ति वाले पास पहुंच गया। काफी खबर सुन ली, आई होप भी इंजॉय भी की काफी इनसाइड मिल गई है भी कि सारी चीजा हो रही। बट एक बहुत माड़ी खबर कल दी, दो बच्चों उन्होंने प्यो वालों मारिया गया गड्डी दे विच, फिर बाद चो 911 ते कॉल करके पुलिस नू बुलाया गया। सो इस सिलसिले दे विच इस प्यो नू जिहड़ा हुण पुलिस दे सामने पेश किया जाए कोर्ट दे विच, ते एक 5 साल का मुंडा 3 साल की कुड़ी। तो दसा जा रहा भी पिछले कुछ एक सालों तो ये 6 साल तो रिलेशनशिप सीगा ये बच्चों की माँ के नाल। पहला कोई इंसीडेंट आपस च अंदर डोमैसटिक वायलेंस के सीगे, बट बच्चों के उत्ते कोई ऐसी चीज नहीं सी, बट इन्हें उन्होंने मर्डर करता। फिर उन्होंने स्टोरी दसी सारी, बट वो सारी स्टोरी तो सामने नहीं आई, बट इन्ना क पता लग्या भी ये बंदा जिहड़ा वो हुण अरैसट कर लिया गया, तो उन्हें बाद च कोर्ट दे विच पेश किया जाएगा, उदों तक इन्हू हिरासत दे विच रखा जाएगा। सो ये क्योंकि डोमैसटिक वायलेंस दियाँ गल्लां बातां ते खबरां जिहड़ियां ने काफ़ी ज़्यादा मंदभागियां हुंदियां, सो इहदे तों बच के रहना चाहिए जी। तो उहदे नाल नाल बच्चों की जो गलबात करते हैं तो बच्चे अजकल जिमें जिमें वैदर गर्म होना तो बच्चे बाहर घूमना फिरना पसंद करते हैं। तो एक इंसीडेंट भी नज़र आ रहा जिदे च बच्चे जड़े आ वो बच्चे होस्पिटलाइज किया गया, लैके जाया गया, क्रैश हो गया स्कूटर तो व्हीकल दे विच। सो इहो जिहे जिहड़ियां इंसीडेंट ने भी काफ़ी खतरनाक हुंदे ने। तो नॉर्थ ईस्ट की एक घटना जी कैसल पार्क रोड की, तो कैसल पार्क वे दे उत्ते 6 बजे की घटना है जिदे बारे इनफॉर्मेशन जिहड़ी है आ रही है। नॉन लाइफ थ्रैटनिंग इंजरीज जिहड़ियां ने दसियां जा रही हैं, तो बच्चे नूं उत्थों लैके जाया गया। तो ये नाल नाल कुछ एक होर जिहड़ियां खबरां ते घटनावां जिहदे च जिवें ही ट्रंप ने अनाउंसमेंट की है पाइप लाइन अपरूव होने की, तो अलबर्टा एनर्जी सैक्टर न्यू प्रोजैक्ट जिहड़ा है वो दे बारे जानकारी तो दे ही रहे हैं। नाल दी नाल ही ट्रंप का भी एक दिन बाद कहिंदे बयान आ गया भी पाई कारनी हुणां दा भी कि मैं पाइपलाइन जिहड़ी है वह अलबर्टा वास्ते होर नवी पाइपलाइन जिहड़ी है वह गलबात करांगे। तो ये पाइपलाइन की गलबात जिहड़ी है वह चलेगी, पर दसा जा रहा भी लोगों का बहुता विश्वास इस गल उत्ते हैगा नहीं कि भी ये पाइपलाइन जिहड़ी है अपरूव होएगी या अगे चलेगी, क्योंकि ये पहला तो लोगों का यह मनना। बट वैदर जिदा मैं पहला अपडेट की सी वैदर दे विच अगले 24 घंटे दे विच हल्की फुल्की बारिश जिहड़ी है कल शाम तक होने के चांसिस ने, बट वैदर जिहड़ा गर्म रहेगा तो अगला वीकेंड जिहड़ा ये गर्म रहने के चांसिस ने। नाल नाल सवेर तो जिहड़ा पहला ईवेंट सीगा मेरा एशियन हैरीटेज फाउंडेशन वल्लों किक ऑफ अज की गई है चाइना टाउन दे विच, तो उत्थे पहुंचने का मौका मिलिया तो अज उहदी भी किक ऑफ हो गया जी। तो कल तो प्रोग्राम जिहड़े ने शुरू होणगे, विसाखी मेला वन ऑफ दैम प्रोग्राम है जिन्हों एशियन हैरीटेज फाउंडेशन जिहड़ा वो सपोर्ट कर रहा, तो विसाखी मेले का भी तुसीं आनंद जिहड़ा आने वाले दिनों दे विच माण सकोगे। कल भी इन्हां दे प्रोग्राम जिहड़े ने वह चलते रहणगे। प्रोग्राम का समा जिहड़ा है वह आलमोस्ट समाप्ति वाले पासे हो गया। तो जे तुसीं कोई गलबात करना चाहते हो मेरे 403-400-0203 से संपर्क कर सकते हो, या सबरंग .ca से विजिट करके होर जानकारी भी ले जा सकती है। विसाखी मेला 16 मई नूं होएगा, उहदे च जरूर पार्टिसिपेट करना। तो अज का प्रोग्राम इत्थे समाप्त करने जाए दो। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड शब्बा खैर टू ऑल। थैंक यू।
3: You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनर नाल भरिया है इना दा शोरूम अज ही इना दे शोरूम ते पुजो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कैलगरी कारपेट एम्पायर फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी
1: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
2: ताजियां सब्जियां फल फ्रूट दालां मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा कीमतां कट ते क्वालिटी A1
1: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
2: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव
2: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू
1: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड
2: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर
1: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे
2: छेवीं लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
2: 403-835 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस एना ही नहीं एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाईया जा सकदियां ने बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नु 403-617-2111 ते ते अमन गिल नु भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है